ओ आवे हिचकी मन चले हिचकी बदली जावे जमनूरी मारो हाली तुझी तारे मारो बदलो ची तारे।